इजमाली तरीन जायजा लेते हैं तो हमें यूं लगता है जैसे अल्लाह ने इनको बचपन और लड़कपन से ही अपने दीन के लिए गोया चुन लिया था। एक जिंदगी का चंद महीने का हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो किसी और काम में गुजर गया हो। बाज़ वक़्त होता है कि मिसाल के तौर पर कोई आलिम होता है, कोई मुसन्निफ होता है, कोई मुहक्किक होता है, तो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जब वो मिसाल के तौर पर कुछ और कर रहा था और अपने काम के अंदर वो बात नहीं थी। जब हम रहबर की जिंदगी में देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि गोया अनथक जिद्दोजहद लड़कपन से लेकर शहादत तक और जिस मैदान में खुदा ने उनको भेजा उस मैदान में सुरखुरु होकर बाहर आए। चाहे वो इनकलाब से बहुत पहले की बात थी जब तालिबे इल्म थे और तहसील इल्म के लिए जिद्दोजहद फरमा रहे थे, या वो इनकलाब का इब्तदाई दौर था जिसमें मजलूमियत के सिवा कुछ नहीं था, कभी सावाक के हाथों सीक्रेट सर्विस के हाथों उठा लिए जाते थे, कभी दुश्मनों की इज्जत में, या वो दौर था जब इनकलाब आ गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इनकलाब की जो बुनियादी काम है उनको अंजाम देंगे, या जब वो सदर बने और फिर वो वक्त जब वो विलायत फकीह के मनसब के ऊपर फाइज हुए। सिर्फ आखिरी दो मनसब अगर मैं ले लूं, सदर बनना और विलायत फकीह के मनसब पे फाइज होना, इसकी मुद्दत हम में से बास की उम्रों से ज्यादा है। 46 साल ये मुद्दत बनती है, 38 साल तकरीबन विलायत फकीह के मनसब के ऊपर और 8 साल सदारत का मनसब। तो ये 46 साल तो ये समझ लीजिए ऐसे थे कि दिन रात में कोई वक्फा है ही नहीं आपको जिम्मेदारियां अंजाम देनी। और खुदा ने उस ज़ईफ़ी के बावजूद जो जवानों की सी हिम्मत इनको दी हुई थी कि आखिरी में जो उनके फर्जंद ने बताया कि जब वो शहीद हुए तब भी हाथ मुट्ठी इतनी कस के बंद की हुई थी कि लग रहा था अपना पूरा इरादा जमा करके अपने हाथ को थामे हुए। और ज़ईफ़ी के आलम में इस हद तक जिद्दोजहद करना, अब ये सोच लीजिए कि ये जो 46 साल हम बात कर रहे हैं, इस 46 साल में कम से कम भी 45 साल उनकी जिंदगी का ऐसा है जिसमें वो माजूर भी थे। हाँ, और एक इंसान अगर माजूर होता है तो क्या समझता है कि मसलन मेरी जिंदगी का काम खत्म हो गया। लेकिन इनको खुदा ने ऐसा अजीब काम नवाजा था कि जैसे उनकी जिंदगी बनी ही इसी के लिए थी कि वो लोगों को हिदायत देंगे। और कितने लोगों को आप तसव्वुर फरमाइए, अगर हम पाकिस्तान के अंदर हों, एक मस्जिद के अंदर पेश इमाम हो, एक इलाके में कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी को लीड कर रहा हो, मुमकिन है 1000 लोग 2000 लोग 1000 खानदान को वो हिदायत दे दे, और कोई वली फकीह हो तो 6-8 करोड़ तो खुद ईरान के अंदर रह रहे थे और कितने करोड़ उनके मानने वाले दुनिया में थे। ये कितना सवाब बनेगा इसका काबिले तसव्वुर नहीं है। और ये तो सिर्फ मेहनत को मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब इस एक तो बाज वक़्त ऐसा होता है इंसान मेहनत करता है, मेहनत में गहराई नहीं होती, मेहनत में हदफ नहीं होता, मेहनत में मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी ऐसे बड़े पाकिस्तान के किसी बड़े सरकर्दा बैंकर को ले लीजिए, पता नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए कि मिसाल के तौर पर उसने हम्बल बिगनिंग से शुरू किया और इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, पूरी जिंदगी मेहनत कर ली, कमा लिया, तो मेहनत तो है, गहराई नहीं है, कमाई से क्या होगा। इनकी जिंदगी की बरकत सिर्फ मेहनत नहीं है, मेहनत के पीछे एक और हुनर है जो हम सबके लिए मशाले राह बनता है। बस मेहनत भी हमारे लिए मशाले राह है। और दूसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा अहम है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद दूसरी बात जो समझ में आती है वो अगर मैं एक लफ्ज में उसको खुलासा करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा उबूदियत, अल्लाह की बंदगी। इंसान का जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल ही यही है जो कुछ है। खुदा ने मुताल फरमाता है कुरान करीम में इंतहाई सादा और इंतहाई अमीक अंदाज में फरमाया मा खलकतुल जिन

होते देखते रहे। ये मेरे ख्याल में हजारों साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इसके ऊपर इजाफा एक और कर दें तो फिर तो मुझे नहीं मालूम तारीख बशरियत में कब हुआ था। वो ये कि अवाम, वो अवाम जो 50 दिन तक हर रोज दुश्मन के सामने खड़ी रहे और इस दौरान उस अवाम के लीडर्स हर रोज शहीद होते रहे, यहां तक कि वो अवाम अपने लीडर से कहे कि खुदा का वास्ता आप लोग बाहर मत आए, हमें लीडर्स की जरूरत है। आप ये साबित करने के लिए कि आप अवाम के दरमियान बाहर आते हैं, शहीद हो जाते हैं, आप अब मकाम पे पहुंच जाते हैं, हमारा क्या होगा जिनके सारे लीडर खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद अवाम उन लीडर से कहती थी कि खुदा का वास्ता आप लोग बाहर मत आए, रोड पे हमें मरने दें और मोर्चों में हमारे फौजी बैठे हैं और लीडरशिप के महाज पे आप लोग बैठे। ये तारीख बशरियत में नहीं होता है। और ये सब का सब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए नहीं हुआ है, ये किसी टुकड़े को बचाने के लिए नहीं हुआ है, ये सब का सब दीन इस्लाम की इज्जत की खातिर हुआ है, मुसलमानों की जान और माल की खातिर किया गया है। और ऐसे मुसलमानों की जान और माल की खातिर अपनी जानों की बाजी लगाई गई है जिनका उनसे नस्लन, जबानन और इलाकाई जुग्राफियाई एतबार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी तारीख बशरियत में नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने हमें ये देखना नसीब किया इस कौम की इस्तकामत के लिए, इसके लीडर्स की इस्तकामत के लिए, और ये कि हम इस मारके के अंदर अपना कोई मुस्बत किरदार अंजाम दे सकें। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इतनी ये इस्तकामत दिखाई गई, इतनी ये इस्तकामत दिखाई गई कि जो उनसे बुग्ज में मरे रहे थे सारी जिंदगियां, वो भी तौबा करने पर मजबूर हो गए और मानने पे मजबूर हो गए कि भाई हमने गलत किया था। और ये कौम जो है वो अपने काम के अंदर बहुत अच्छी कौम साबित हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात तारीख बशरियत में ऐसे मकाम आते हैं जहां पर हक और बातिल को तशखीस देना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। दो लश्कर खड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कौन सा लश्कर हक का है और कौन सा लश्कर बातिल का है। बहुत दफा ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुछ हक और बहुत कुछ बातिल से होता है। इसको हम फितना ताबीर करते हैं और नहजुल बलागा में मौलाना खुतबा नंबर 50 में इसको इंतहाई खूबसूरती के साथ, इंतहाई गहराई के साथ और फलसफी और मंतकी अंदाज में इसको बयान फरमा। तो ये दुनिया की दास्तान है कि फितना मचता है, दो लश्कर खड़े होते हैं, थोड़ा सा हक इधर भी है, थोड़ा सा हक इधर भी है, बहुत सारा बातिल यहां भी है, बहुत सारा बातिल यहां भी है। बहुत कम तारीख बशरियत में ऐसा होता है कि एक तरफ हक ही हक हो और दूसरी तरफ बातिल ही बातिल हो। ये तारीख बशरियत में बहुत कम होता है। और खुदा ने हम पर ये एहसान किया कि हमें उस दौर में भेजा जब इसको तशखीस देना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। और क्यों ऐसा था? दुनिया में कहीं भी कोई बैठा हो, लिबरल, सेकुलर, रिलीजियस, किसी भी दीन का मानने वाला, मैं उससे सिर्फ एक बात कहूंगा, एक तरफ सैयद अली खामनाई को देखो और इनके साथ शहीद होने वालों को देखो, और दूसरी तरफ इस अमरीकी सदर को देखो और इसके साथ खड़े हुए लोगों को देखो। अब तुम में अगर कोई इंसानियत है तो अपनी इंसानियत से बताओ कौन हक पर है और कौन बातिल के ऊपर है। एक तरफ से इंसानी अखलाक, इंसानी विकार, इंसानी किरदार का मुजस्सम पैखर, और न सिर्फ वो अकेला बल्कि उस मुल्क की सियासत में विकार है, उस मुल्क की कार्रवाई के अंदर इंसानी किरदार झलक रहा है। एक दफा भी इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें दुनिया इनसे कहे कि ये आपने खिलाफ इंसानियत कर दिया, एक मर्तबा भी ऐसा कोई काम नहीं किया।
और सा

सामने वाले ने पहले दिन से ऐसा काम किया कि कोई इंसान उसको दिफा ना कर सके। पहले दिन ही 160 से ज्यादा मासूम बच्चियों को मारकर इन्होंने अपना चेहरा आश्कार कर दिया दुनिया के सामने। और इधर से तहम्मुल ही तहम्मुल दिखाया गया। तो मुझे यूं लगा जैसे मामला इस्तेकामत से बढ़कर और हदफ से बढ़कर किरदार पे आ गया कि हम दुनिया के सामने एक ऐसा किरदार दिखाएंगे कि दुनिया उस किरदार को मानने के सिवा कोई रास्ता देखेगी ही नहीं। तो ये जो मुझे और आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि बाज ऐसे लोग जिनको हमने अपनी पूरी जिंदगी मुखालफत करते देखा था, अब वो भी सर झुकाने पे मजबूर हो रहे हैं, तो ये मोजज़ा आसानी

तामुल दिखाया गया। तो मुझे यूं लगा जैसे मामला इस्तेकामत से बढ़कर और हदफ से बढ़कर किरदार पे आ गया कि हम दुनिया के सामने एक ऐसा किरदार दिखाएंगे कि दुनिया उस किरदार को मानने के सिवा कोई रास्ता देखेगी ही नहीं। तो ये जो मुझे और आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि बाज ऐसे लोग जिनको हमने अपनी पूरी जिंदगी मुखालफत करते देखा था, अब वो भी सर झुकाने पे मजबूर हो रहे हैं, तो ये मोजज़ा आसानी से पेश नहीं आया है, ये अनथक जिद्दोजहद से पेश आया है। इसके पीछे वही इंसानी और आला इंसानी अकदार हैं जिनको रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी जिंदगी में लोगों के सामने पेश किया और कौम को इसके लिए तैयार किया। अब चंद मिनट्स में ये भी अर्ज करूंगा कि उन्होंने कौम को जो तैयार किया जिससे कौम ये मारका कर सकी, वो तैयारी क्या तैयारी है? दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कदीम जमाने से एक जुमला बहुत मशहूर है फौजियों के दरमियान खासकर, तो वो कहते हैं कि बंदूक अहम नहीं है, जो बंदूक के पीछे बैठा है वो अहम है। तो ये अहम नहीं है कि असलहा क्या है आपके हाथ में, अहम ये है कि असलहे को लेकर जो फौजी बैठा है वो क्या है। अच्छा, इस जुमले के कहने वाले ने बहुत ही महदूद तरह के किरदार को असलहे के पीछे बैठे हुए में सोचा है। तो मिसाल के तौर पर इस जुमले के पीछे जो ज्यादातर समझा जाता है, मैं फौजियों के दरमियान कभी कभी सुनता हूं, तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि वो जो पीछे बैठा है उसके इंसानी अकदार क्या है, नहीं वो ये नहीं सोच रहे होते। वो ज्यादा ज्यादा सोच रहे होते हैं जो पीछे बैठा है असलहे के वो बहादुर है या नहीं है, बस इतना, बहादुर है या नहीं है। अगर बहादुरी है तो ये जुमला पूरा हो गया। रहबर मुअज़्ज़म ने इन तमाम मेयारों को आसमान पे पहुंचा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं किया कि मैं 30 साल 35 साल की मंसूबा बंदी करके ईरान में 100 से ज्यादा मिसाइल सिटी बना दूंगा। आप यकीन मानिए एक एक मिसाइल सिटी इंजीनियरिंग के एतबार से मौजज़े से कम नहीं है। अभी मैं और आप किसी मुल्क के इंजीनियरिंग के मौजों को सुनने लगते हैं तो क्या सुनाते हैं वो हमें, वो हमें सुनाते हैं कि हमने समंदर के नीचे से एक टनल निकाली है और वो यहां से घुसती है और वहां से निकलती है। एक टनल, एक टनल, 100 से ज्यादा मिसाइल सिटी बनाए हैं ऐसी पहाड़ियों के नीचे जिनको बंकर बस्टर जैसा बम भी 15-20 मीटर से ज्यादा खोद नहीं सकेगा, जो आम हालात में 50 मीटर खोद देता है। उन पहाड़ियों के नीचे सैकड़ों किलोमीटर्स की सुरंगें बना दी हैं, और वो सुरंगें कैसी हैं, उसमें एक आदमी गुजरेगा नहीं, एक आदमी नहीं गुजरेगा, पूरा ट्रक जिसके ऊपर बाज़ोकात 25-25 मीटर के मिसाइल लगे हुए हैं वो इन टनल्स में से गुजरेंगे। और कितने बनी है ये, 100 से ऊपर है। और किसने बनाई है, आप पाकिस्तान के अंदर एक मोटरवे बनाने लगे तो आप कोरिया से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, और रहबर मुअज़्ज़म ने उस कौम से ये काम करवाया जो इनकलाब से पहले बिस्किट भी नहीं बनाती थी, उस कौम से ये काम करवाया। तो मिसाइल सिटी बना दी, ये कारनामा है? नहीं, बहुत बड़ी बात है, इंजीनियरिंग का मिरेकल है, ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। ये कारनामा है कि वो मिसाइल बनाए जिसका अमेरिका अभी ख्वाब में भी नहीं सोच रहा कि ईरान के पास होंगे, और कुछ ऐसे हथियार जिनका अमेरिका को भी पता है कि उसके पास नहीं है, उनको भी पता है कि इनके पास है और उसके पास नहीं है। ये कारनामा है? नहीं, ये कारनामा नहीं है। कारनामा क्या है? कारनामा यह है कि उन्होंने ये मिसाइल सिटी बनाए, उन्होंने ये मिसाइल्स बनाए, उन्होंने ये सारी तरकीब की कि अगर हम सब मर जाएं तो क्या होगा, कैसे होगा। ये भी कारनामा है। हाँ, इससे भी बढ़कर एक कारनामा है, वो क्या, वो ये कि हम सब मर जाएं तब भी कयादत मुत्तकी और परहेजगारों के हाथ में होगी। ये कारनामा है, ये कारनामा है।
تو ایک متقی

परहेजगार आए वो हमारे दुनिया में इतना होता है, इतना होता है। एक मदरसा बनता है, एक मस्जिद बनती है, एक इदारा बनता है और उसके मरने की देर होती है। फिर जो बाज़ोका जूतों में दाल बटती है वो पूरी दुनिया को नजर आती है। ये बहुत होता है हमारे यहां। रहबर मुअज़्ज़म का कारनामा यह है कि वो 8 करोड़ इंसानों को लेकर चले, पूरी दुनिया के मुकाबले में इनको खुद कफील बनाए, इनको पूरी दुनिया के हक के लड़ने के लिए तैयार करे, पूरी दुनिया के बातिल और कुफ्र से लड़ने के लिए इनको असलहे दे, उन असलहों के बनाने में ये कौम किसी कौम की मोहताज न रहे और इतनी तैयारी देकर जाए कि मैं और मेरे नीचे और मेरे कोऑर्डिनेशन में जितने लोग हैं सब शहीद हो जाएं, तब भी ये हाथ जालिमों में ना लगे ये असलहा, तब भी ये असलहा मुत्तकी और परहेजगारों के हाथ में रहे। ये असली कारनामा, ये कारनामा कहां से नसीब होता है? मैं रहबर मुअज़्ज़म के उस्ताद गिरामी इमाम खुमैनी का एक वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद बाज़ वक़्त बहुत बड़ी बड़ी हकायक छोटे छोटे वाकयात के अंदर नजर आते हैं। रहबर मुअज़्ज़म के दिल में इंसानियत के लिए क्या हमदर्दी थी छोटे छोटे वाकयात में ढूंढिएगा। अहले सुन्नत के एक इलाके में जिलावतन किए गए इनकलाब से पहले, वहां पर सैलाब आ गया, सैलाब में 2-3 बच्चे एक खानदान के मर गए। उन बच्चों से ताजियत करने के लिए रहबर मुअज़्ज़म गए और इतना अहले सुन्नत वालिदैन के सामने रोए कि बाद में वो वालिदैन इनके साथियों से पूछ रहे थे क्या ये हमारे बच्चों के अलावा किसी और के लिए रो रहे थे? उनका नहीं, आपके बच्चों के लिए रो रहे थे। क्या हकीकत यह है कि हम भी इतना नहीं रोए जितना ये रो रहे थे। इसमें नजर आता है कि ये दिल क्या दिल है। या मसलन जुम्मे के खुतबे में खड़े हैं और किसके ऊपर रो रहे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों की सैलाब की मुसीबत पर, इस पे रो रहे हैं। ये नजर आता है ये दिल क्या है। तो आपको बहुत बड़े बड़े वाकयात ढूंढने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वाकयात में देखिएगा कि ये मारका है क्या। तो इमाम खुमैनी का वाकया मशहूर और मारूफ, मशहद के एक बहुत बड़े आरिफ से मिले और इनकलाब से बहुत पहले की बात, जब जवान थे खुद इमाम खुमैनी, मसलन शायद 25 साल 28 साल कितनी उम्र, उनसे मिले और वो नुखुद की जिनकी कब्र मौला 8वें इमाम के रोजे के नीचे जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर वो कब्र है। आप जाके कभी देखिएगा कि जब उनकी कब्र खुद रही थी तो लोगों को बता के मरे थे कि मेरी कब्र तकरीबन 20 फुट नीचे खोदना। तो गोरखन भी परेशान था कि इनको 20 फुट नीचे क्या मिलने वाला है कि अपनी कब्र 20 फुट नीचे करवा रहे हैं ये। बाद में पता चला कि मरने के भी कई 10 साल के बाद वहां मौला के हरम के सहन के नीचे बेसमेंट बननी थी और कब्र बेसमेंट के फर्श के लेवल पे रखवाई थी उन्होंने। अभी भी उनकी कब्र बेसमेंट के फर्श के लेवल पर है। तो इस तरह के वो आरिफ थे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम खुमैनी गए आगा नुखुदकी के पास और उनसे कहा कि आप के बारे में मुझे पता है कि आपके पास इल्म कीमिया है, तो आप इल्म कीमिया मुझे सिखाइए। जो जानते हैं वो जानते हैं, जिन जो नहीं जानते उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ कीमिया तर्जुमा है केमिस्ट्री का। असल में केमिस्ट्री का इंग्लिश लफ्ज तर्जुमा है कीमिया का। ये जो इंग्लिश लफ्ज है ये उस कीमिया से लेकर बनाया गया है। इल्म कीमिया क्या होता था? इल्म कीमिया इब्तदा में बिल्कुल उस इल्म को कहते थे जिसमें साहिब इल्म किसी भी धात को सोना बना सकता था, उसे कीमिया कहते थे। आपने उर्दू में भी अशार में सुना होगा कि मसलन वो कीमिया लेकर आए, तो कीमिया का मतलब क्या होता था? कोई इल्म था जिसके जरिए से किसी भी धात को सोना बनाया जा सकता था। अच्छा, ये इल्म था या फिक्शन है? सिर्फ आपके जहन को नजदीक लाने के लिए अर्ज कर दूं कि मेरी जिंदगी में भी इल्म कीमिया पर अमल करके सोना बनाने वाले

जिंदा है, थे सही कर लूं, थे। तो ये इल्म फिक्शन नहीं है, ये ट्रू इल्म है, ऐसा हो सकता है। और आज की दुनिया भी तायद करेगी, लेकिन उनके पास जो इस वक्त रास्ता है वो इतना महंगा है कि फिर सोना बनाने की जरूरत नहीं है, इतना महंगा पड़ जाएगा। उनके पास जो इल्मे कीमिया वाले थे, सस्ता रास्ता था जिससे किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था सस्ते में। तो इमाम खुमैनी को पता चला कि नखुदकी के पास वो इल्म मौजूद है। अच्छा, आप ये कि उन आरिफ के पास वो इल्म कहां से आया, तो ये मैं अर्ज करता चलूं कि कदीम जमाने में हत्ता बरे सगीर के अंदर मदरसे सिर्फ अरबिक लिटरेचर, फिक और उसूल के मरकज नहीं थे, असल सारे उलूम मदरसों के अंदर ही थे। ये जो आपके पुराने बादशाहों ने 16वीं सदी में 17वीं सदी में इमारतों के आज के हिसाब से मोजज़े खड़े किए, इनके इंजीनियर्स कहां पढ़ते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? मसलन ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर्स इंडिया की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे? उस यूनिवर्सिटी का नाम आप मुझे बता सकेंगे क्या? शेरशाह सूरी के जमाने में वो रोड जिसको बाद में अंग्रेजों ने जीटी रोड कहा और हम भी अंधेपन में जीटी रोड कह कह के मर रहे हैं, शेरशाह सूरी के जमाने में वो रोड बनाने वाले इंजीनियर किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? आप क्या उस यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, ये मदरसों के पढ़े हुए थे और उन मदरसों के अंदर ये सब पढ़ाया जाता था। और हमारे यहां भी ऐसा ही था, बरसगीर के अंदर भी और ईरान के अंदर भी ऐसा ही था। फिर बाद में अंग्रेज आए और उन्होंने मदारिस को कहा कि ये सब जहालत के मरकज हैं, इन सबको खत्म कर दो और हम तुम्हें बताते हैं, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ले लो और लाहौर की यूनिवर्सिटी ले लो और उसमें वो इंजीनियर बनाए जिसको 40 साल 50 साल पालने के बाद जब हमें पहली बड़ी रोड बनानी पड़ी तो कोरिया से इंजीनियर बुलवाने पड़ गए। यानी 400 साल का हमने रिवर्स गियर लगाया इल्म के अंदर इन यूनिवर्सिटीज के जरिए से, और वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उनको हमने मदरसों के नाम पर जहालत का टाइटल देके रिजेक्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ बाकी रख लिया और उसके नतीजे में जब उनके यहां ये मौका मिला कि लोग बाहर आए काम करने के लिए, अब देखिए कि वो टेक्नोलॉजी में कहां पहुंच गए। पूरी दुनिया के अंदर रैंकिंग में है और आलम इस्लाम के अंदर तो टॉप पर है, क्योंकि उन्होंने अपने उन इदारों को तबाह नहीं होने दिया और ना उन्होंने अपने उन स्कॉलर्स को इनके हाथों जलील होने दिया, वो अभी भी जिंदा थे। और बहरहाल जो कुछ भी, तो इमाम खुमैनी गए सखुदकी के पास और उनसे कहा कि आपके पास इल्म कीमिया है। अब इन लोगों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। इमाम खुमैनी जब अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे और सख्त बीमारी में मुब्तला थे और सख्त तकलीफ में भी थे एक एतबार से, तो अगर कोई आकर उनसे पूछता था आपकी तबीयत कैसी है तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। हत्ता उनकी बहू वो डॉक्टर, वो कहती है जब हम जाते थे और उनसे पूछते थे आपकी तबीयत कैसी है, वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सही हूं। कहेंगी फिर मुझे समझ में आया कि मुझे पूछना कैसे है। फिर वो कहनी है मैं जाती थी और उनसे पूछती थी क्या आपके जिस्म में तकलीफ है, अब झूठ नहीं बोल सकते थे, कहते थे हाँ है। तो क्या तकलीफ बहुत ज्यादा है, कहते थे हाँ तकलीफ बहुत ज्यादा है। और अगर उसी दौरान कोई आ जाए और पूछे आपके हाल कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे। तो जब नखुदकी से इन्होंने पूछा कि क्या आपके पास इल्मे कीमिया है, अगर नहीं था तो उनको एक जुमला कहना था नहीं है, खत्म, मामला खत्म। आयतुल्लाह उल उज़्मा बहजत से किसी ने पूछा क्या आपके पास तय्युल अर्ज है, अगर नहीं था तो उन्हें क्या कहना था, नहीं है। अब झूठ नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, है। तो आयतुल्लाह बहजत ने क्या किया, उनसे पूछा क्या आपके पास तय्युल अर्ज है, पूछने वाला होशियार है उसको पता झूठ नहीं बोलेंगे, पूछा क्या आपके पास तय्युल अर्ज है, उन्होंने जवाब में कहा जब हम नजफ में थे तो परचून वालों के पास भी होता था, छुपा गए।
परचून वालों के पास भी होता था, अब ना नहीं।

कहा ना हाँ कहा। तो अगर नुखुदकी के पास इमाम खुमैनी गए, कहा क्या आपके पास इल्म कीमिया है, वही होशियारी यस या नो। उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो उनको एक जुमला कहना था, नहीं है। उन्होंने पूछा तुम इल्म कीमिया सीख के क्या करोगे, खत्म। इसका मतलब है कि है, इसका मतलब है कि है। पूछा तुम इल्म कीमिया सीख के क्या करोगे, कहा कि मैं सोना बनाकर गरीबों को दूंगा ताकि उनकी जिंदगी में मुश्किलात में आसानियां हो। उन्होंने कहा खुमैनी ये बताओ अगर तुमने वो सोना उनको दिया, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि वो उसको खुदा की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं कहा तुम ये गारंटी दे रहे हो कि तुम नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं कहा, जिनको तुम दोगे वो नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमाम खुमैनी ने थोड़ा सोचा और कहा नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकते। कहा अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो इल्म दूंगा जिसमें इस गलत इस्तेमाल का इम्कान नहीं होगा, गलत इस्तेमाल का इम्कान नहीं होगा। सही है, ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि रहबर मुअज्जम ने वो कौम भी तैयार की जो इन मिसाइलों का गलत इस्तेमाल ना करे, ये उस उबूदियत का नतीजा है जो खुमैनी जैसों से खामदाई ने सीखी है। हाँ, तब इंसान को वो ताकत मिल जाती है कि वो दूसरे को ताकत दे और दूसरा भी उसको गलत में इस्तेमाल ना करे। वरना हमारे यहां जो मामूलन होता है दुनिया के अंदर, वो एक आदमी पुरखलूस को चीज तैयार करता है और दूसरा उस पुरखलूस का हमारी उर्फ में जुलूस निकाल देता है। इनके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ना कि इनके चेक एंड बैलेंसेस बहुत अच्छे हैं, नहीं ये नहीं है। ये क्या है, ये है कि इन्होंने महज बंदगी के साथ उस रास्ते का इंतखाब किया जिसके अंदर किसी मिसयूज का कोई इम्कान ना रहे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद अजल फर्ज। खुदा ने मुताल का एक बार फिर इंतहाई शुक्र है कि उसने हमें ऐसी अजीमुशान शख्सियतों को देखना नसीब किया। आखिर में अपने लिए इस यादावरी के लिए कि अब मैं क्या करूं जिंदगी में जो इस एहसान का कुछ ना कुछ हक अदा कर सकूं। तो मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं एक दिन आकर शहीद खामेनाई के लिए मजलिस पढ़ूं, ये काफी नहीं, या मैं 40 दिन तक उनके लिए मजलिसें पढ़ता रहूं, ये मेरे लिए काफी नहीं है। ना मेरे और आपके लिए ये काफी है कि मैं और आप 40 दिन तक गैदरिंग्स में जाते रहे, मजालिस में जाते रहे, ये काफी नहीं होगा। क्या काफी होगा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनका जो जिंदगी का अंदाज था उसमें से जो हम इख्तियार कर सकते हैं वो क्या था, उसके ऊपर अहमियत देनी पड़ेगी, उसको अहमियत देनी पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया, बहुत बड़े बड़े कारनामे बाज़ोका छोटी छोटी चीजों के अंदर रखे हुए होते हैं। आप चाहे वो रफा के पास जाए, चाहे इन शुहदा के पास जाए, चाहे आप किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएं जो दूसरों को अल्लाह की बंदगी में ला सके, एक बात कदर मुश्तरक है, वो क्या है, ये लोग खुदा से गुफ्तगु करने के माहिर हैं, जिसको आप और मैं उर्फ आम में राजो नियाज कहते हैं। ये खुदा के साथ राजो नियाज के माहिर होते हैं। इसको बहुत टाइम देते हैं, बहुत टाइम देते हैं, यानी बाज़ औकात आधा घंटा पौना घंटा ऐसे काम करते हैं जिसके बाद खुदा से चंद मिनट राजो नियाज का माहौल बन सके, इस पे बहुत मेहनत करते हैं। तो मिसाल के तौर पर रहबर मुअज्जम कितनी मरतबा कुरान पढ़ते थे दिन में और कितना कुरान पढ़ते थे, जाके देखना पड़ेगा। तो मुझे जो याद आता है, बाज़ औक़ात मेरी मेमोरी में भी कोई ऐसी चीज रह जाती है जो बाज़ औक़ात मुझे शर्मिंदा कर देती है, गलत हो जाती है, लेकिन जो अभी याद आता है वो ये कि रहबर मुअज्जम

आप जब ने कर लिया, ये दो घंटे में आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा क्या तुम्हें काम है? कहने लगे भाई अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो हम आप उसके हिसाब से डाइट रखेंगे, अगर आप बैठ के कुरान पढ़ते हैं तो हम उसके हिसाब से रखेंगे। उन्होंने कहा ये दो घंटे मेरे और खुदा का मामला है, आप लोग दखालत मत दें। यहां आकर उन्होंने डॉक्टर्स को खत्म कर दिया मामला। कभी डॉक्टर ने कहा कि अगर साहब आपकी आंखें खत्म हो रही हैं, आप इतना मफाती पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं, आपकी आंखें खत्म हो रही हैं, आप ये पढ़ना थोड़ा कम करें। उन्होंने डॉक्टर से कहा मैं सब बातें कबूल करूंगा लेकिन मैंने आंखें रखी ही कुरान पढ़ने के लिए, इसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुरान पढ़ना। फिर एक मौके के ऊपर उनसे कहा गया कि आगा साहब आप इस तरह रेस्ट किया करें, आपके लिए अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक दिन उन्होंने एक बात कही जिस पे इमाम खुमैनी गर्म हो गए, गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आगा साहब आप अपने पाँव को कुछ देर के लिए दूध में डाल के रख लिया करें, उससे आपके जहन के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो उन्होंने अपने ऑफिस इंचार्ज से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मेरा जैसा ये करेगा? तो ऑफिस इंचार्ज ने कहा कि आगा साहब आपको पता है कि अगर आपके पांव को भी दूध टच हुआ वो दूध भी जाया नहीं होगा। कहा नहीं, अल्लाह की नेमत को पांव में रखूं ये खुमैनी नहीं करेगा, ये कभी नहीं करेगा। इस ताकत पे आकर ये लोग खुदा के सामने इतने खाजित है, खाजित कि नहीं ताकत में है लेकिन हम खुदा के बंदे हैं, हमें खुदा की बंदगी करनी चाहे कुछ भी हो जाए। आ साहब ये मामला ये नहीं है कि ये लोग कितने क्या थे, असल मामला ये है कि बंदे खुदा थे। वो मशहूर वाकया है, रहबर मुअज्जम पहाड़ी के ऊपर जाते थे अपनी सेहत के लिए और वो हर कुछ दिनों के बाद ये काम करते थे, तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखते थे, गार्ड्स वगैरह जो होते थे कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तो लोगों को नहीं बताते थे, वो किसी भी रास्ते से चले जाया करते थे। तो एक दफ़ा एक रास्ते से जा रहे थे तो अचानक एक जवान लड़का और लड़की को उन्होंने देखा कि थोड़ा नाशायस्ता हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। तो जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि अब हमने सोचा कि नहीं मालूम अब इन दो का क्या होगा। वली फकीह के सामने ऐसी हालत में जो हम रोड पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि इमाम खुमैनी ने देखा, उनको बुलाया अपने पास और उनसे सिर्फ एक बात पूछी, कहा ये बताओ वाकई एक दूसरे को चाहते हो या सिर्फ जिंसी ख्वाहिशात के लिए कर रहे हो? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इस ताकत में हो और इस पॉइंट पर पहुंचे। कहा ये बताओ वाकई चाहते हो सिर्फ जिंसी ख्वाहिशात? उनका वाकई चाहते। तो कहा शादी क्यों नहीं करते? कहने कहा हमारे वालदैन राजी नहीं है। कहा जो अपने वालदैन से कहो कि खामनाई निकाह पढ़वाएगा राजी हो जाए, मैं निकाह पढ़ाऊंगा। ताकत में होते हुए इतना तहमुल चलता है कहीं? ये वो चीजें जो इनको बड़ा बनाती हैं और ये वो चीजें जो इनकी मोहब्बतों को दिलों में डालती हैं। और ये मिसालें हमारे सामने बहुत मौजूद हैं कि इनकी मोहब्बतें कैसे रहती हैं। आज साहब अभी हम लोग शायद इन मसाइल को समझने के शायद काबिल ना हो कि रहबर मुअज्जम जैसा जंग में मरने वाले किसी ईसाई फौजी को शहीद कह के खिताब कर रहा है। ईसाई फौजी को शहीद कह के, मैं कभी कभी पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, कम से कम इतना हौसला दिखाता हूं कि अगर कोई ऐसा दीनदार मरा हो जो इस्लाम में आने से, इस्लाम के आने से पहले अपने दीन की वजह से कहीं शहीद हुआ हो तो मैं उसको शहीद कहता हूं और उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता हूं। और कितनी दफा ऐसा होता है कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप क्यों इनको फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या करूं, क्या ये शहीद नहीं है? ये इस्लाम में आने से पहले शहीद हुए हैं। खुदा ने मुताल असहाब उखदूद का वाकया बयान फरमाता है जो इस्लाम के आने से पहले का है और खुदा ने मुताल फरमाता है बिल मोमिनीन, इन्होंने मोमिनीन के साथ ये काम किया। जब खुदा उनको अहले ईमान ताबीर कर रहा है तो अगर मैं उनमें जो लोग मारे गए उनको हम शहीद नहीं कह सकते? हम में ये हौसले नहीं है? हम लोग अपनी खास फिक्र से चीजों को देखने के आदी हैं लेकिन ये इस ताकत पे जाकर ये हौसला बनाते हैं अपने अंदर कि हमें किसी और तरह से चीज़ों को देखना है और उसमें अल्लाह की बंदगी सबसे अहम है।